0: हालेलुया।
1: कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा है।
0: ये देखो की बड़ी
1: और भाई पड़ोसी
2: टेलिंग जोक्स एंड दे आर डेड लव्स।
3: ओके बैक टू होमवर्क।
2: Telling jokes and they are dead laughs.
3: Okay, back to homework.
2: Hey.

पाक विवास एफएम समय सूचक यो पाक विवास एफएम को समय हो अहिले बिहानको 9 बजे।

मैं फूल हूँ, सुगंध की मैं चंद्रमा हूँ, चमकती मैं धरती हूँ, आकाश की क्षितिज नहीं भेटौला, उनको प्यास मेटौला, मैं कोमल ओठ तिमी रातो लाली, तिमी मेरो काली, म तिम्रो काली।

0: Leoninho, Radio NRN 99.1, Sapeca Lampi Sutana.
1: क्लासिक टेक को वाईफाई 6 राउटर नाम ए कहाँ बने शक्तिशाली 4 एंटीना में वाइड कवरेज 5G स्ट्रेंथ लो लेटेंसी र फास्ट स्पीड सबै अस्त्र को शक्ति बोकेको 200 Mbps को इंटरनेट अब 3 महीना का लागि मात्र 3300 रुपैयाँ मा साथमा आईपीटीवी मात्र 250 प्रति महीना बुकिंग को लागि 9801004477 शर्तहरू लागू हुनेछन् क्लासिक टेक छोयो कि चल्यो

के तपाईँलाई तयारी सुन र सलित चाँदीका गहना आवश्यक छ या पुरानो सुन रिफान गरी एक नम्बर बनाउनु परेको छ? यदि त्यस्तो हो भने सधैँ हामीलाई सम्झनुहोस्। मनोकामना सुन चाँदी पसल। कैनपुर छ कैनपुर बजार त्रि चौक प्रोभाइडर पदम रसाइली ममता रसाइली। सम्पर्क 9861237744 र 9853577।